हे गिरिधारी गोपाल, हे बंशीधारी, तो लबक सिंगी संजब हमनी नहाकती, वारब सिंगी शु मरुपनी, कनबी की ब्रज गोपी सिंह बो सोरारेंगी मखुतेगी।

आकाशवाणी इम्फाल हौजिकता भी रसी रेडियो क्लास सहुम मरीफुतरा मंगा सुबह तंकक थोरमसी दा तहनजगनी क्लास फोर की हिंदी सब्जेक्ट की तरुक सुबह परा थोरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांगलोइना पुथोक्चबनी

0: as kaya da phaja khabayuk no ni ayuk ko vilai re minang se okha khaje changdam ni ngai laite mahau sai lai re bi ima gi phaja basi kari ga changdam la ro ni bigyana phana ja khatuna su mahau sa ko bining thi binang budi mai thi be pi banga moi as usik na khoina ayuk wai re hai da na khong bu sibu sei ta bogum na chom nung siri si kari gi no hai ba aima laising su phaja na cha le ni manam na marola manung siriba le hau su chak la mi aduna ne ba nung siri se as mayan mayan lai gi manam si ti tok na nung siri da ko ya mi chak le se le hau se ma sing ti ge kaya cha ti eng ge ba
1: namma na si di na pi ma sam sang ge ma khang an ge
0: ya hey ma as as siam cha ti nu khang ni he idea
2: khang brani ne
0: kai ne yese dia as pi ma san nang ma thong yam cha de ko nang sumai na khang an ba hauna bra mu chi ngang se sumai na mu chi ma chi ma na ji le that ge ba
2: ayo ayo
0: kan dau i
2: ni ni
0: kan dau i
2: lan jare ba ai ma tu mo han dau jare ba ai lan jare na le bi ga no ba
0: nang nai ngon da kari ki khang an li ha
2: ne ne na di a ma sam do chang rong chang na tha da ra ga chareng thi ba dau na mur mur chol la ga lai du dia
0: o adu lai ba du da ka dau ra ba ha
2: nushi da na lak na ba ne ba lan jare
0: angau bi ma mo rong ga ne ba a phare phare angang chi achum ba di nga ngi nga chi ge di nga pi ra ke ko
2: ne ne a kai no ma hai ge tau ba adu chaw ka nu ko
0: hai chaw ro ye kai no hai yo nang na hai ba da ai ne ya da ba yau khrap ro kai no hai yo ba kai no nang bu mi khangan ma na ma ro la ma hai ri ba hau ji tin da ron pau thok tre ne hai ro ba nang na hai ngam tre ti ai hai ro ha lai tak pi yo na hai ge khan ba na dra
2: o ne ne yang khang ye khoi ni ne se yang nu sing o
0: nu si rang ni la la la pha gi ta bu ni da a to mang go noi na pa ra si da
2: hoi ni ne
0: मंगोनी का फक्का का थारा का लड़का का हान था ना मजा नहीं नहीं
2: हाय एंगो जानो को पर क्या मजा मत उन्हें हरे बा अधूरी नहीं नहीं द तक पियो हाय के तो बने
0: ए अधूरी अरुबनी है अतो फरे नंग बो आयु की संगों का बुधा बो
2: थक जी याँ मनली है थक नींदे नहाले रग थक के
0: होय
2: अधूरी लाइक पास ही रा
0: लड़ी हंग दो पारा जी करम बपारा नो इंगों तक हंग लो
2: Nenek, tu Sigi deh, si dah lagi se
0: Eh, si di sharing ni ni Yang o, masih tak tengah dah Nangon dah sharing ke maram dah Ay, wakara hai ke ko Ay, na nangon dah hai ke hari se Ay, na yang khang hai re Dan na hai panah de ko Yang o, sharing hai bachi ga Waring ga mana de ko Waring da di ne, hai ningi bado Zam na dum pong du e पारग सु इराई लाइन भाप ताबंग मेबा अदुगने सेरेंग हाइबसिदति वाहे अमादा अर्थ कया कया म लोतुन लयेबा तेन ख्रब सेरेंग अमन ने अर्थ कया मारो मम पीबंग मी खंग
2: निने आइ को स्कूल गि ओजाना सु अदुमाइन हाये
0: अदु चुमे इशम छम न हाइरबदा सेरेंग हाइबसिदा आइबा मना मागी थमोय दे फौरकले बा वाखल अमदि मान पामी बदो फजब वाही वता सिजिनारगा फोंगडोक पनि मदुदा ताबदे नुङाइबा वाही सिजिने अदुगा ताल नायना वाही सिंगदो हाइदोक पा नत्रगा पाबदा ताल यावली क छैरेंग कैनो हाइबकी अर्थति हनबदा अराइब नते लुइ क हाय वाही चारगा नंगसु यामकुप न खंगा खिनिदा
2: नेने ऐले अम्पी इंगाई दे को इहान हाने लाइक तंबका बदने ओजा मने लाइक तो इसे ही दोना सलगा ताईबा ऐना कपड़ागा को माने एगी कुतनान बीरगा नुशी ब्राइम्स मगा इसे ही दोना का सक्पे वानी दा अदु सुने एगी लाई अपाक पा अमा दयाओ बा
0: अंगांग निंगाई चाउ बीने ना थे मिने बतो नंगांग दरो हाँ
2: सहिंग सैरेंग दी वारेंग दोंग ना पाबे आदे पाबे मतम दा सुर तान याऊ ना पागनी लेफम मफम सा ना सा ना लेप क दबनी
0: यम चमे अदोई दी सैरेंग सि पार छ को
2: आ
0: यंगोरी ना नंग हाना पागेरा हा पारो
2: nene hana pa biyo aduga ai amuk nene gumna pa ge ba hai braying ge ba
0: ai hana paro di ai parage adu ai na paring de nang pungchang na ta ga da bani ko wahi singa do ucharon chi ing ne cheng na hai bangam na ba hona ga da bani aduna ai na pa ba matam de nang chu mun na chek chin na tao hai ba ko taro ko ai parage ko हम बालक है फूल सरीखे पूजा करते ज्ञान की हम सूरज के साथ चलेंगे हर बाधा को पार करेंगे विद्या पाने के राहों में जितने भी हो कष्ट सहेंगे नंगमु पारो तार से
2: ने ने ना पारी से अदुम पारो के क्वा
0: पारो ने पारो ने यारे
2: हम बालक है फूल सरीखे पूजा करते ज्ञान की
0: गुड
2: हम सूरज के साथ चलेंगे हर बाधा को पार करेंगे
0: पार करेंगे
2: पार करेंगे
0: गुड
2: विद्या पाने की राहों में जितने भी हो कष्ट का सहेंगे
0: जितने भी हो कष्ट सहेंगे
2: जितने भी हो कष्ट सहेंगे
0: यारे यारे
2: निन्या ताबे आर ब्रा उचारण अरान बे आर दी तक पियो क्वा
0: होइ नि तक ले इसी निने अदोई ती आई मा खाम पार आगे आई ना हाय बदो पुनिंग जंग ना तागा तबनी को
2: होइ
0: अदुगा छाइरिंग इबद सिसि नरि ब वाहि बता सिंगसे सुकि मतिक थोत नावी अदुना अखंगा हि सिंगना छाइरिंग दी छैवै ना सखबे आइ हाइने नंगना साहाय गि बदो नोय गि वजा मनै छै दोंना छागा नंगोन नान थैबी हाय बदो अदु मखा मु पार आगे तारो को
2: होइ
0: श्रम को हि हम धर्म मानते क्यों कर चिंता हो जान की हम बादल से मतवाले हैं तारों से बोले भाले हैं हमें पता है यह भी लेकिन हम इन देश के रखवाले हैं मतिक से नंग मुक पारो ऐ मुतार के
2: पार आगे को उच्चारण अरान बेरासु हजुकी तो माइन तक पियो को
0: ताके ताके हरो हरो
2: श्रम को ही हम धर्म मानते क्यों कर चिंता हो जान की हम बदल से मतवाले हैं
0: हम यंगो हम बादल से मतवाले हैं
2: हम बादल से मतवाले हैं तारों से बोले
0: बाले
2: हैं
0: बोले बाले हैं
2: बोले बाले हैं हमें पता है यहाँ भी लेकिन हमें देश के रखवाले हैं यार जानी ना
0: यानी अदो अमतंग का पाको
2: श्रम को ही हम धर्म मानते क्यों कर चिंता हो जान की हम बदल से मतवाले हैं तारों से भोले बाले हैं
0: गुड
2: हमें पता है यहाँ भी लेकिन हमें देश के रखवाले हैं यार ब्रनी ना
0: यारे यारे यारे अराना होई दिया उद्रे सोगे सोगे खगतावी को यारे अदो परेंग अनी दंग वाली मसी ए मु पार के तारो को पहरेदारी सदा करेंगे अपनी जन्मभूमि के मान के को अमुक पारंगे पहरेदारी सदा करेंगे अपनी जन्मभूमि के मान की नंग मु पारो तार से लाइक पा भाई बसी से नुगाय खरा जानी पावा हो खरा दी तुमनिंग दबनी पारो ने
2: होय ने आइ से नुगाय ए लाइक पा बहो खरा दी को जागा नि थकने हाय बकाओ बने ए छि हाय ग नि सिंग ए ने ने इबानी संगम थकत्री ए
0: हमा होय ने संगम थकत्री ने ए आइ सु खाली ने खनाओ ग छि खरा खरा कांगे ना नंग लाइक पा मु को निने मंग देखि संगम लो थोरगे नंग सुवारा मनि थासि आइ छ लाउनु पु थोरके को आयु मन ता लो लगा फ्लाक ता हिज लगा थनमा बनि लेरमु
2: होय निने निने जंखि

ठोंगाम इबो जोंने सकपा केसी नंदन सेरिंगबा मणिपुरी मतम से मताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिकता भी रसी नाहरोल की खुंजेल।

या स्कुलदेखि रोजी तामदि जीवनमला मरुपसिंह सिना खनबिरकले वारी लोइद्री फिल्मसिदेखि एके यांगोय एसके मंगांग दिव्या हौबम अमदि लोइजिं खुम्बी मयामसिगे अपुनब खोंजेलदा अजित बाबू निंथौजमनो सैरेंबादुगा ननाव सगोल मांगना सैरांग बिसै इसाय सि खुदोल तमजरी मयामपुना तमिनसी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तोंगान तोंगान बा मखल मथे ले थारुम कया अदम नाकस फानी इंफाल के एफएम सांगाई चैनल देगी लेप्तना ताबी दी लेप्तना दुमक ताबी हो हाउजे लांथोक सरी तोंगान तोंगान बा सेशक पा सेशक पिशिंगे खुंजल धा की मथक मथक मोइना।

आकाशवाणी इम्फालगी एफ एम संगाई चैनल दगी नुमाइना ताबिरी हौजगा मुख लांथोक चरी रेडियो लीला तत्सिल लकलीबा लंगला लीला ईबा थिंगुजम निरुपमा देवी लीला पुथोकपा माइबम ईसाकांता पुथोकपद तेंबांगबा अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह म्यूजिकता चनम्बम बसंत सिंह हौजिक लैजरे रेडियो लीला तत्सिल लकलीबा लंगला।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अधोम धोरम दावी रिबासी आकाशवाणी फालगी FM संगाई चैनल दिगिनी हौजिक पुंगफम असदा मुक लांथोकचरी मणिपुरी फिल्म इसैसिंग मथंग मथंग ओइना खुदोल गे अहानबदा तामिनासी लैचल फिल्म असदगी गी चंद्र पुख्रम बममदी नेन्सी खुमन अनिगे अपुनब खोंजेलदा दालुम गुरुमयुम ने सैरेंगबा रेगिट लिसमना सैरांग बैसै खलुदे असुप तांगबा खुदोल मपु नै फमदा तंबीरम गनी हाइबा नंगसे खुदोल नी मिकुपसु पुंजासु नंतनी एगिदी नमी गुम लेजगे इमी गुम लेबियू।

0: हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून कनाओ वीरा बनो
1: आई सी नो कोपे की सावित्री
0: के दो वीरा मी बनो
1: आ मैडम आई जान बजे फसान के अनुवाय से ने थब ओ बुदिंग हम से त्री समुंग गले
0: ओ करी ओइन ngam दा बनो
1: आई जे लोक नै ओइन ngam दा बा
0: सदोई
1: सुम कोले मामांग दे कोले रमना खरेन सुम हाय कि बा मसा मसु सिंह ने सुम सेवा तो वी बगे आई जो इतानो पा मा खग या बुतु नाइ जे नो मांग खा दो पुती रे गई मा कुमांग अन तुए नो पुछन बिरो पुतु दे सुम नुची वैसा न तोर कुरु सुम नो आय जा बा पुक्षे बा
0: माने माने इमा उदि फंग बिरो ब्रो
1: फंग ने नो नो पिए मा
0: ओ अदुदि होय होय दुदि सावित्री इमाना हाइबिर एसे इचा इमौना सेबा यामना फजना तौबी अदुगे नुंगाइबा नुशिबदु पाउदम निंगबगे हाइबिरपनि फोन तौबिरपनि को
1: ओ नुंगाइजेगे मेदा
0: होय होय मदुमक पुसि चुप्पा फंगबो ओइसनु हाइदनासु थमजेगे मामापा ओइबसिंगना मचाबु चाउनबा होनरपदा अवाबो कोंगाई को अदिगे चागदा बबाव चादना मचागि दमकता इचागि दमकता हाइदना कथोग लाकपदो मदु मखोइना चावरा कांदा मचा ओइरिबा सिंगदुना मतिक चाबा मियोइ सिंग ओइरबा मतम मपुंग मरै फाराबा मतमदा इमा इपा बुंग मिराइ बसे दुमक ngasai caller खोइगे लिसनर सिंग इमा सिंगना हाइबिरक पदगि हाइदि खोइनासु अदुम उदबदिनते उजै मयामगि मरकता अदुम याउदबनते सुंबसु अदुना सिगुम बसे कै हाइतारे खलनिंगदबा इमा अपोपि अदुगा एगि इनेबो पुसु अपोपि इमानि हाइदना खनबसिग लोइनना इमादु नुशिरबदुगुमना एगे इनेम दु दसु नुशी बसे थमगदि नुंगायै फबा कयै तारे अदुगुम्बा इमुंगमा इंग बतप्पा मरा चेतपा अमो ओइगनी एसे थाजै अदमाइन तौदना मने मकु ओइबसिंगनासु लाइबा ममौदु इचा सखना कयै तारे को हाइनिंग बंगांगनिंग बबु ओइरबसु मालुम थमनदना तौनरगदि हाइनरगदि मदु नुंगायै फबा इमुंगमो ओइगनी हाइना खनजै दुना ममचा ओइबसिंगना ममादगि अहन ओइरे हाइदना लाबथोप तौरैदबनेना खनजे अदुना नुशीना वखल अवाबा फाउहनदना नुआइना थंबीसी हाइबु वाफम सिसुमयामगि मफमद थमजेरि
1: तुमनेमेदा खादतरि मेदा मुजु
0: होय होय नाबसु फबिरो थौरम गयादा अदुमक सरुग्या बिरो थागत पफंगदुकचेरि
1: होय होय

शुक्रिया दोस्त, मैं रीना। नमस्कार। 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित इम्फाल के संगाई चैनल का ये है गीतों और नगमों का कार्यक्रम संगीतमय अपना गीतमाला। और गीतमाला के अंतर्गत सदाबहार गीत के आज के इस भाग में मैं हूँ आपके साथ और आपका हमसाया, आपका साथ निभाने आई हूँ वैलेंटीना।

दोस्तों मौसम है बरसात का और इस सावन के झूमते बेलों के साथ अपनी उमंग और तरंग ली हम बांटने आए हैं आपके साथ अपनी सदाबहार गीत और ये है पहला हमारा सदाबहार गीत आवाज लता मंगेशकर की और इस गीत में गीत के लेखक हैं जावेद अख्तर और राहुल देव बर्मन और इस संगीत में आप सुनने जा रहे हैं फिल्म दुनिया से ये यादगार और बेशक बेशक मोहब्बत से भरी हुई ये गीत है अपना सदाबहार गीत का ये पहला नजराना

और दोस्तों गम और खुशी को तोलती हुई इस तराजू को कहते हैं जिंदगी। और जिंदगी का अगला ये मुकामी गीत है तोहफा फिल्म से। इंदिवर और बप्पी लहरी के तालमेल पर बनी ये गीत और संगीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की गायन में।

जब जब मौसम अलबेला हो तो मोहब्बत की इनायत भी बरसाती है। इस बरसात के साथ ये गीत है बहार आने तक फिल्म से, इब्राहिम अक्ष की बोल और अनुराधा पौडवाल के साथ पंकज उदास के गायन में ये गीत है राजेश रोशन के संगीत से भरा हुआ।

और रुत ऐसी है जैसे कि ये हाल है उस बाली उम्र में, ये हाल हो चला है गीतमाला के गीतों के साथ भी, और आज है सदाबहार गीत। ये अगला सदाबहार गीत है आवारगी फिल्म से, मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में, रचनाकार आनंद बख्शी और संगीत प्रदान किया अनु मलिक ने।

दोस्तों, हो ना हो ये गीत, ये किसी का मनपसंद गीत होगा। बिल्कुल, ये मेरा तो मनपसंद गीत है, लेकिन आपका, आपका सुनने के बाद पता चलेगा। सुनिएगा, क्योंकि ये गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मधुर आवाज में। मनपसंद फिल्म से ये गीत है, अमित खन्ना के लेखन में ये गीत, और सुर से सजाया राजेश रोशन ने।

सुर में सुनाती हुई ये सदाबहार गीत है और जिंदगी को सारे गामा सिखाती हुई हमारी गीतमाला है। और अगले कार्यक्रम के लिए रहिएगा हमारे दोस्त मैरिना के संग और दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।

0: चुम्मी भाई, चुम्मी महाशिनी भाई, चुम्मी महाकाशीमुनि भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, चुम्मी महाशिमुनि भाई।
1: नंगी दुबो तसिंग चुम्मा ब्रो।
0: चुम्मी भाई महाशिमुनि मिन्नो मो।
1: ओ, अदो नंग माबो क्या मुंशीगे?
0: मुंशी भाई, माधी, आई थावे दिके सुम्माने मुंशी।
1: अदो, नंग ना माबो पन्याम मुंशी रसो, नंगी निंगबली थुंगा रेबो।
0: कहीं नहीं शिबो।
1: नंगी मां बाबूंग नसो माबु सोइदन इंथोपी लगानी
0: सदो मरम करी गिनोमी मरम ने सोआय हाइदे भाई
1: अदुगा नंग नसो माबु सोइदन मिलाई बि लगानी
0: आइ नंग जि मरम ने कैनो सोआय हाइदे करी गिनोमी दबो
1: मादी मौनी

हमनाई बने वो तुम हाई बो हमने बरा निपान सन्नबा लंबील अमा सेमु हाउजे खुदकता निपीन सन्नबा लंबी अमा ग सेम बीरो हाउजिंग मग सेम द्रव

मखल मठल की थौरम कया सन्दोक्तुन तहंजरीबासी आकाशवाणी फल्के एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंफुम अरुमगिदमक पूर्ण लाक्चरी गुड इवनिंग मणिपुर की थौरम थौरम मसिगिदमक अरुमगी खोंगलोय लौरिमबम चंदनाना थौरम ताबिरिब ख्वाइखेबिपु तराम नोकचबग लुइनना खुरुमजरी थौरम मसिदा अरुम नखुइदाबिब मणिपुरी फिल्म नत्रगा मतम इसई सिंह एखोगी थमजरिब मोबाइल नंबर 9863102016 नंबर असिदा एसएमएस नत्रगा व्हाट्सएप मैसेंजर दा खनबिरप यारगनी थौरम मसिगिदमक थमजरिब एखोगी मोबाइल नंबर अमुक हन्ना निंगसिंगजरी 9863102016 अरुमगी एसएमएस गाइजरी

0: साहब।
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: दे तुम्हारी राह में करती है
1: तांजरी बा गेट की कोटोलो से गलो इन्हें ना गेट संडोक चबा मतांगा से डलो संजरी आकाशवाणी इंफाल हाउसिक नुमिदांगे पुंग तरा मखाई तारे संगाई चैनल की थोड़म लोई संजना पर मतम योरकले हाइंग इराई नुमिद जुलाई की तांगुन मरी इंग्लिश सिंगनी कुंतरुक इंगेन की तरा निपान बा सकाप तले सिंगमा चमापल निफुनिपाल आयुक की पुंग मंगा मखाई ताब मतम दगे संगाई चैनल की थोड़म संदोक पर हुजगनी संदोक चगदबा मेघ चाम अहम दशमिक मंगा मतम मधु फाउ पटंगी दी कई नबया थी जरी पिनाबिर जय हिंद।

चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां कभी किसी की मुस्कान मिलती है तो कभी किसी की याद। इश्क मिलना और बिछड़ना शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे गहरी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस एहसास भरे सफर को इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों कितनी अजीब बात है कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं और जब एहसास सच्चे हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह गीत पसंद आया होगा। किसी का इंतजार दुनिया की सबसे मीठी बेचैनी होती है। हर आहट में वही चेहरा नजर आता है और हवा में चारों तरफ सिर्फ नहीं वही नाम गूंजने लगता है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
1: जी, विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
2: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। Benchmark domestic indices decline for fourth straight session. Sensex falls over 350 points. Nifty settles at 23,870. Most Asian stock market indices close in positive zone. And global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870 अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: And before we take the top story, important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 364 अंक लुढ़ककर 76,391 पर आ गया। वहीं निफ्टी 127 अंक गिरकर 30,870 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। इससे पहले भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में गिरावट का रुख और तेज हो गया, जिससे सूचकांक लगातार चौथे दिन नीचे आकर बंद हुए हैं।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 364 points.

0: close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index and the Small-Cap 100 Index fell around 1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid geopolitical uncertainties and rising crude oil prices. The bearish sentiment intensified further during the second half of the session, dragging the indices lower for the fourth consecutive day.
1: Sensex mein shamil 30 mein se 19 companies mein aaj giravat darj hui. सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों को देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.3%, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% और इंडिको में 1.6% की सुस्ती आई. इसके विपरीत महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.7%, टीसीएस में 1.5% और एटर्नल में 1.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 24 आउट ऑफ 26 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. अमंग द टॉप लैगर्ड्स रियलिटी ड्रॉप्ड 1.8%. Services slipped over 1.6% and telecommunication fell over 1.3%. In contrast, auto advanced over 0.5% and insurance rose 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,585 companies declined, shares of 1,637 companies advanced and shares of 169 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट कारोबार करते हुए 96.57 पर बंद हुआ. सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो इसे केवल अल्पकालिक करेक्शन हम मान सकते हैं या फिर बाजार किसी एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब तमाम भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है और तेल की कीमतों में जो उछाल है वो भी देखा जा रहा है?
2: नहीं निखिल जी, मुझे लगता है जो इस हफ्ते हम जो देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है, आज चौथा दिन है जब हम जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं भारतीय बाजार, तो मुझे लगता है जो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो दोबारा से जो है काफी तेज हो गया है और उस किसी भी तरह की कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई किसी तरह की कोई पीस का जो या तो बातचीत हो रही हो, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन वो कितनी सार्थक होगी या कितनी सार्थक है वो अभी भी बिल्कुल अनिश्चितता है. और जैसा आपने कहा कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, मतलब वो लगातार बनी हुई है. बीच में हमने देखा युद्ध विराम हुआ लेकिन वो टिका नहीं उसके बाद, और साथ साथ जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, तो इस तरह इस पूरा इस और साथ साथ जो इस बार फिर हम देख रहे हैं जैसे पहले हुआ था कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उबाल, $90 के आसपास उसके ऊपर भी कीमतें चली गई थी, अभी आज इस समय भी मुझे लगता है 90 के आसपास है, तो वो हमारे लिए तो कम से कम बहुत खराब खबर है. और चूंकि हम तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो हमारी तेल या गैस की जो जरूरतें हैं उनको हम आयात करते हैं, तो इस मुझे लगता है मोटे तौर पर बाजार में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से.
0: सिद्धार्थ, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द नेगेटिव्स इन द मार्केट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव ड्रैग्ड डाउन द मार्केट्स फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन, बट बिटवीन ऑल दिस यू नो आई सी अ रे ऑफ होप. इफ यू लुक एट द auto sector, the auto stocks, actually today is the second day that the auto stocks and auto shares have risen. So what are the reasons that even amongst this doom and gloom auto sector is doing so well?
2: Anubha, I would say auto obviously is still in the positive territory, and the most important reason, if you look at the auto sales, the numbers that we got, the last numbers, and if you look across across segments, whether it was four wheelers, two wheelers, three wheelers, or sales of EV, which is really picking up now, and plus also the commercial vehicles, plus also if you look at the rural side, the sales of tractors, so we have seen a very positive growth in auto sales across segments, and I think that is the reason which is keeping the auto stocks in green. Plus also if you look at the results, the Q1 results, we've got a couple of auto companies have posted very very good results, very very healthy results. So I think that is primarily the reason. And on a large scale also, I would also say that India's growth story, India's the demand side, whether it is rural or urban, I think both sides it is intact. So I think it is primarily

0: because of that. And larger market obviously is under pressure because of the rise in oil prices again.
1: So in a way you can say that investors actually, even when the other sectors are not doing so well, the investors actually believe, you know, they go also with the future performance. They are, you know, they also assess the future performance of certain sectors, which help, you know, in those sectors to do well.
0: See, Anubhav, if you look in last year and a half, one of the features which has become which is something which Indian also kind of reflects on the maturity of Indian markets, that all along, since if you look post Trump, Donald Trump's assumption in as a US president, the tariff that he unleashed across the globe, not only India, it's a lot of other nations have been victim of Trump's tariffs. So you've seen the domestic institutional investors, though we've seen the exit of foreign institutional investors in a big way in last year and a half, 2 years, we've seen them exiting. So, but the domestic institutional investors and also the retail investors, so they showed maturity and they showed their faith in the Indian economy and they continue to invest. And now, since you said that investors always look at the, you know, at a future and make their investments looking at the future prospects. So if you see the last 1 month from 15 June to 15 July, the positive side is that now the foreign institutional investors are also returning to the Indian markets. So, and they have almost bought to the tune of about $6 billion. So, and if you look at the net data in terms of their selling and buying, I think that also is around $3 billion. The data that we have till from 15 June to 15 July.
1: Yeah.
0: So I think as far as Indian economy goes, I think there is nothing negative for us, except yes, we had slight questions on our monsoon. The so I think, and but despite sluggish monsoons, the sowing has been good for the Kharif season. So I think except that, I don't see any challenges in terms of for our domestic one. But yes, there are external factors which are having impact on our Indian economy.
2: Siddharth, abhi large cap ki baat kar rahe the, thoda sa dhyan aapka small cap aur mid cap ki taraf le jao, to 1% ki giravat hame dekhne ko mili hai. To kya ye andaza lagaya ja sakta hai ki niveshak ab is taraf paisa lagane se bach rahe, jokhim uthane se bach rahe, ya dusre jo karan hai wo isme zyada apni importance dikha rahe, jaise bikwali ki jab hum baat karte hain?
0: Nahi Nikhil, mujhe aisa nahi lagta hai. Aise dinon pe jab bhi bazaar girti hai, to ye jisko hum kehte hain, ye hamesha ek ye trend bhi hai. Aap dekhenge ki small कैप और मिड कैप्स में जो गिरावट वो कहीं ना कहीं हमेशा ज्यादा होती है लार्ज कैप्स के बनस्पत. दूसरी बात, पिछले एक डेढ़ साल की जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने जो है लार्ज कैप्स की तरफ, या जो उनको लगता है थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा शायद निवेशक उस तरफ ज्यादा गया है. हालांकि मैं उसको कहीं से भी इस तरह से नहीं मानता हूं कि बाजार में निवेशकों का जो है उनका भरोसा कम हुआ हो या टूटा हो. मुझे लगता है वो कंप्लीटली इंटैक्ट है. हाँ, ये इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा, चाहे महंगाई पे हो, चाहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी उसकी रफ्तार है, गति है, ग्रोथ, तो उस पे इंपैक्ट होगा. तो शायद कहीं ना कहीं वही बाजार में हमको इस हफ्ते दिख रही है.
2: लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये भी कि पिछले सप्ताह बाजार ने काफी मजबूती दिखाई, तो इस हफ्ते वो मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही. जबकि अगर एक हम रेंज लेकर के चलते हैं तो वैश्विक घटनाओं की रेंज लगभग उसी प्रकार से, लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है.
0: नहीं निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखेंगे कि शायद जो आपने देखा कि लास्ट वीक फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे स्थिति, तो शायद कहीं ना कहीं एक बाजार को भरोसा था कि शायद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो दोबारा जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ज्यादा दिन ना चले और दोबारा दोनों बातचीत जो है बातचीत शुरू हो और किसी तरह का कोई पीस टॉक्स हो और उस कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रूस हो जाए. और तो शायद क्योंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से लगातार अमेरिका के जो हमले हैं 8-9 दिन हो गए हैं वो बने हुए हैं. और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने बल्कि ये वार्निंग दी है कि अब वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जो बिजली संयंत्र हो या चाहे उनके ब्रिजेस हो या पुल हो, तो उन पे भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज हैं जो तेल लेके वहां से निकल रहे हैं. उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने जो ईरान सपोर्टेड हूती रिबेल्स हैं उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो
1: अल्टरनेट
0: सप्लाईज का एक रूट बना हुआ था उसको अब उन्होंने उस पे भी उन्होंने जो है रोक लगाई बल्कि दो जहाजों पे अटैक भी किया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है
1: बट सिद्धार्थ यू वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट एंड यू नो इन फैक्ट दैट इज व्हाट इज बीइंग हैज बीन मेंशनड इन द आरबीआईज स्टेट ऑफ द इकॉनमी बुलेटिन दैट जुलाई बुलेटिन एंड एज यू वर सेइंग दैट यू नो द एफआईआईज आर मेकिंग अ कमबैक हैव मेड अ कमबैक इनटू द इंडियन इकॉनमी सो दैट ओवरऑल इफ यू नो लुक एट इट It's a very good news because as the RBI bulletin says that the healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have helped sustain economic momentum despite challenges arising from fragile geopolitics and supply chain pressures. And as you were mentioning, foreign portfolio investors infused $3.1 billion into equity and debt markets in July up to the 20th of this month, while foreign direct investment remained higher during April and May this year. So overall, like we are discussing that it's the trust of not just FIIs, the domestic investors, as well as FIIs, is still intact and, you know, in the Indian story.
0: As, Anubha, as you rightly said, it is not only the FIIs, as you also mentioned that figure. In FII, in April, May, the FDI inflows have also, it's almost at a record level of about a little over $6 billion.
1: Yeah.
0: And we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion, which is, I think after 4 years, we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country, and especially at a time when things are so uncertain. And
1: yeah.
0: as the RBI report also mentions about the heightened global economic
1: yes.
0: uncertainty, also supply bottlenecks. But despite all that, they have mentioned in the report the demand, as which whether it is in the urban areas or in the rural areas, and if you look at the GST data, the digital payments data. So everything is positive. The India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth, and the only concern is on the food side.
1: The
0: kharif sowing has been a little delayed because of the monsoon onset of monsoon was a little delayed, but there also a big a caveat for us is that we have huge stocks of food grains,
1: right?
0: So there is nothing to worry, especially the rice, wheat, the essential items, plus government has also been kind of procuring the essential vegetables also to ward off any such eventuality. So I do not see in terms of our own domestic parameters, macroeconomic, everything is positive. And if you look at the worst of projections for our current financial year GDP, India would definitely be the fastest growing economy, and all the projections are upwards of
1: 6.5%.
0: So, and if you look at even the first 3 months of export data, so even there we are seeing a 16% growth. So I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges. Yes, inflation could be a concern in terms of obviously oil, high oil prices feeding in. So, but that also till now, the last data we have seen 4.4%. I think that also is within the band.
1: Yes.
0: So,
2: सिद्धार्थ, इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है, तो क्या ये कि ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल प्लेस देने के मामले में?
0: नहीं, देखिए निखिल, जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि हम बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $700 बिलियन, तो वो ही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपये पे प्रेशर जरूर आया करेंसी पे, चूंकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने इमीडिएटली स्टेप्स लिए। एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ हैं, चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की जो सप्लाई है, उन पे इम्पैक्ट ना हो, तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी स्थिति पे नियंत्रण रखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप दूसरा लिया जो फर्टिलाइजर को लेके था, ताकि हमारा जो खरीफ की जो सोइंग थी उस पे इम्पैक्ट नहीं हो। एक तो हमारे पास फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे भंडार थे, साथ ही सरकार ने तुरंत जो भी इम्पोर्ट, बहुत हाई प्राइस पे हमने इम्पोर्ट किया लेकिन हमने किया तो

0: और जो आपका सवाल है कैसे जो जो निवेश आ रहा है जो FDI FPI और उसके साथ साथ एक और अच्छी हम लोगों ने अभी ने FDI की बात की FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की दोनों में हमें एक पॉजिटिव इनफ्लो दिख रहा है उसके साथ साथ एक कल एक और RBI ने आंकड़ा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है
1: जी।
2: आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है।
1: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year-on-year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
2: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है। वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार कुशल कार्यबल बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। तो सिद्धार्थ जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है उधर
0: ना केवल यूरोप जैसे आप देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले हैं। हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए मैन्युफैक्चरिंग में आए तो हमने उसके लिए PLI स्कीम्स जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट आल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग
1: जी
2: जी। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.4% चढ़ा। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% ऊपर आ गया। जापान के निक्केई में लगभग 0.5% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया।
1: Let's move on to the commodities. Global crude oil prices surged today. Brent crude was trading almost 4.9% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 4.4% up at $90.70 per barrel when reports last came in. Let's also have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading 1.2% down at 1,44,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% down at 2,22,790 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% गिरकर 1,43,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी करीब 2% नीचे आकर 2,22,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ कारोबारी सप्ताह की बात करें तो कल अंतिम दिन होगा और आज चौथा दिन था जब लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले भी सुस्ती देखी गई। अब क्या लगता है कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर ऑयल्स के दाम पर या फिर जो दुनिया भर में तमाम अनिश्चित राजनीतिक की अनिश्चित घटनाएं हो रही हैं उन पर या फिर और भी कोई भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं?
0: नहीं, मुझे लगता है निखिल सीधी सी बात है, एक जो अमेरिका और ईरान का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, क्योंकि उसी का सीधा इम्पैक्ट है जो आपने बोला क्रूड ऑयल प्राइजेस पे। तो मुझे लगता है जो एक बड़ा चीज जो निवेशकों को की नज़र होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
1: सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, यू नो स्पेशली गोल्ड प्राइसेस, सो वी सी दैट fallen a little bit, you know,
0: in and Anubha, I would also add one more thing here.
1: Sure.
0: To the Nikhil ke jo sawal tha, Q1 results hamare acche aaye hain, abhi tak jo results aaye kafi acche results hain, uske bawajood hum bazaar mein giravat dekh rahe hain, to kahin na kahin wo jo sabse bada niveshakon ke man mein ya bazaar mein jo impact hai wo America aur Iran ka jo yuddh hai aur wo uska bhavishya mein kya hoga.
1: Ji, a very short brief comment from you on the gold and silver prices, because are we seeing the falling in price because of the high US bond treasury yields and because of a firmer dollar?
0: Actually you've answered your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
1: Yeah.
0: Each time there is uncertainty, gold prices used to go up, but this time because it is the US dollar and the US treasury yields and the fear of inflation,
1: yeah,
0: so that is driving people away from gold.
2: Siddharth, jis karyakram mein shamil hone aur is mahatvapurna charcha ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
0: Aap dono ko bhi dhanyawad.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices decline for fourth straight session. Sensex falls over 350 points. Nifty settles at 23,870. Most Asian stock market indices close in positive zone. And global crude oil prices rise around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसिनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोस डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे सस्ती, पारदर्शी और चालक हितेशी सेवा बताया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister JP Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister JP Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं.
2: We are always ready for dialogue. The doors of the government are always open and you are welcome to engage in discussions at any time as per your convenience. We are prepared to discuss every issue, including those related to the movement as well as any other matters of concern. The Union Health Minister and Senior Leader, Shri JP Nadda, will hold discussions with you and I will also be present during the meeting.
1: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
2: Earlier, Prime Minister Narendra Modi announced that the center will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both the houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government had acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of examinations will be punished swiftly. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that these social media handles were involved in spreading rumors and false claims to mislead the students and the youth. They urged the people always to verify information before trusting and sharing them. President Draupadi Murmu held delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicosor Dan at Bucharest yesterday. In a joint press meet after the talks, President Murmu said several MOUs were signed between the two countries to strengthen cooperation in science and technology and sports, further deepening the bilateral partnership. President Murmu reached Romania yesterday on the final leg of her three-nation visit. After her arrival at the Cotroceni Palace, President Murmu was accorded a guard of honour. The 23rd Commonwealth Games, that is CWG, have officially begun in Glasgow, Scotland. The opening ceremony is underway. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalist Neeraj Chopra, Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Meanwhile, India have opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semi-finals after receiving a bye. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आवाज है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि दिल की कुछ बातें किसी दिन यूं ही नहीं कही जा सकती। वे समय की लंबी धूप में अपना अर्थ कमाती हैं और कई बार होठों तक आकर लौट भी जाती हैं, क्योंकि उनका ठिकाना किसी के सुनने वाले कान नहीं थे। मैंने उन्हें अपने दिनों के बीच इस तरह संभाला था जैसे कोई दुर्लभ पांडुलिपि वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती है। तुमसे मिलूंगी तो शायद शुरुआत किसी साधारण मुस्कुराहट से होगी, लेकिन उसके पीछे अनगिनत अनकहे मौसम खड़े होंगे। तब समझ पाओगे कि चुप रहना हमेशा खाली रह जाना नहीं होता, कभी कभी वही जीवन का सबसे सच्चा संवाद होता है जो सही व्यक्ति के लिए हम बचाकर संजो कर रखते हैं। और आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो केवल तुमसे मिलकर ही अपने पूरे अर्थ में जन्म लेना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और अगला गीत फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, आवाज है लता मंगेशकर की।

कुछ बातें लिखी जा सकती थीं, फिर भी मैंने उसे किसी पत्र का हिस्सा नहीं बनाया। वे शब्द नहीं, विश्वास की आयु थे, जिन्हें कागज की नहीं तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत थी। हर बार लगा कि आज कह दूं, हर बार लगा कि आज कह दूं, फिर लगा अभी उनका समय पूरा नहीं हुआ। कुछ अनुभूतियां जल्दी बोल देने से छोटी पड़ जाती हैं, इसलिए भीतर ही भीतर उन्हें पकने दिया। अब जब कभी सामने बैठेंगे तब शायद एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगे, कैसे हो, और उसी प्रश्न की तह में छिपे होंगे वे सारे उत्तर जिन्हें बरसों से केवल तुम तक पहुंचना था। और अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म अभिमान से।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आराधना, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है भाभी आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की तो आइए सुनते हैं ये गीत

रजनी ने आज क्षितिज से क्षितिज तक नील पट बिछा दिया था। उस पर बादलों ने रूप बदलते हुए अनगिन आख्यान रचे और सितारों ने बिना किसी शोर के उन आख्यानों में अर्थ भर दिए। एक बादल दूर समुद्र की यात्रा से लौटा था। उसकी देह में लहरों का नमक था, नदियों की स्मृतियां थीं, पहाड़ों की थकन थी, धान की बालियों की प्रतीक्षा थी। एक सितारा करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में टंगा था, किंतु उसका प्रकाश हर रात नया प्रतीत होता था। वो जानता था स्थिर रहकर भी नवीन बना जा सकता है। रात ने दोनों को एक ही आकाश में स्थान दिया। तभी संसार ने समझा, परिवर्तन और स्थिरता प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक दूसरे की पूरक धाराएं हैं। धरती के वृक्ष ऊपर देख मुस्कुराए, मानो कह रहे हो जो ऊपर इतना विशाल होकर भी एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, उन्हीं से संतुलन का पाठ सीखना चाहिए। जब प्रातः की आभा निकली, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित, केवल आकाश था जो सबको समेट लेने के कारण और भी विराट हो गया था।

और ये वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, अंदरप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर चेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

रात उतर आई थी धीरे धीरे, मानो आकाश ने अपने प्राचीन इतिहास का एक और पृष्ठ खोल दिया हो। चांद आज किसी विजेता की भांति नहीं, एक विनम्र साधक की तरह नभ के मध्य विराजमान था। उसके उजले मुख पर युगों की यात्राओं का धैर्य था और अनगिन ऋतुओं की स्मृति। मैंने अपने मन से पूछा, तुझे इस चांद में ऐसा क्या दिखाई देता है? मन ने कहा, मुझे इसका प्रकाश नहीं, इसका संयम आकर्षित करता है। यह कभी सूर्य बनने का

आग्रह नहीं करता, फिर भी असंख्य पथों का सहचर बन जाता है। रात मुस्कुराई, उसने चांद के चारों ओर नील विस्तार का ऐसा मंडल रचा जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने की कोई चेष्टा नहीं थी। वहां केवल संतुलन था और उसी संतुलन में सृष्टि का सौंदर्य निहित था। मन फिर भटकने लगा, कभी बीते वर्षों की ओर और कभी आने वाले दिनों की ओर। चांद उसे देखता रहा, जैसे कोई अनुभवी ऋषि अधीर शिष्य की गति समझ रहा हो। तभी एक शीतल किरण धरती तक उतरी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना बताया, जिसे स्वयं से मिलने का साहस मिल जाए, उसे संसार से शिकायत कम रह जाती है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की

हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। तुम्हारा नाम किसी पुकार की तरह नहीं आया, ना किसी दावे की तरह, बस जैसे सूखी धरती पर हरियाली का पहला संकेत उतरता है, वैसे ही मेरे भीतर एक नया अर्थ आकार लेने लगा। मैंने देखा गुलमोहर पहले भी खिलते थे, पगडंडियां पहले भी थीं, आकाश पर बादल भी पहले जैसे ही आते जाते थे, पर न जाने क्यों उन सब के चेहरे बदल गए। लगता था जैसे दुनिया ने कोई नया वस्त्र नहीं पहना, पर मेरी दृष्टि ने पुराने दृश्यों में नया संगीत खोज लिया हो। अब जब मैं किसी पुस्तक का पन्ना पलटती हूँ, अक्षरों के बीच एक महीन सी गर्माहट उतर आती है। जब किसी नदी का उल्लेख पढ़ती हूँ, तो उसके जल में तुम्हारी सहजता की झलक मिलती है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है। हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। और अब अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। आइए सुनते हैं ये गीत।

सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम है अभिमान

सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। आवाज है यसुदास की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.5।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटान करना है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गाँव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that the paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents. The Prime Minister said he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track codes. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track codes and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. Meanwhile, Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of officer Anu Grover Baliga at the Roos Avenue Court will function as a specially designated fast-track court. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at these Hazari courts, has been transferred to the Roos Avenue Court's special judge for the purpose. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to the media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind with the residents of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: We are always ready for dialogue. The doors of the government are always open and you are welcome to engage in discussions at any time as per your convenience. We are prepared to discuss every issue including those related to the movement as well as any other matters of concern. The Union Health Minister and Senior Leader, Shri J.P. Nadda, will hold discussions with you and I will also be present during the meeting.
2: इसी चर्चा के माध्यम
1: Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram a short while ago, in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife, Gitanjali Yangmo, and senior leaders of APEC's body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchuk went on a hunger strike from 28th of last month demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. The government has said that arrangements have been made for a total of 1,000 yatris to travel to Kailash Mansarovar. 10 batches will travel through the Lipu Lake Pass in Uttarakhand and 10 batches through the Nathula Pass in Sikkim. In the written reply in the Rajya Sabha, Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh said last year, 688 pilgrims visited Kailash Mansarovar by participating in the Kailash Mansarovar Yatra organised by the Ministry of External Affairs. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. They urge the people always verify information and before trusting and sharing them. Gandhi Medical College in Bhopal has developed a new AI-based technology to detect oral cancer at an early stage. The Government of India has granted a patent for the design of this technology. The College's Department for Dental Surgery has also developed an AI-based mobile app called Mukh Arogya. The app will help in the early screening of oral cancer. It can be used by ASHA workers, community health officers and staff at primary health centres. It is expected to benefit people living in villages and remote areas. If early signs of oral cancer are found, patients can be referred to specialist doctors without delay. This will help start treatment on time. And that is the end of this news bulletin.

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा मैंने उसका नाम लिखना भी मुनासिब न समझा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है पत्थर की सनम। तो आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करते हैं आगे की बातें।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। मैंने तुम्हें कभी पुकारा नहीं ऊंचे स्वर में, ना किसी दहलीज पर तुम्हारा नाम लिखकर रखा। फिर भी जाने कैसे मेरे भीतर का एक प्रदेश तुम्हारे लिए आरक्षित रहा। जैसे किसी वन के मध्य एक पगडंडी रहती है, जिसे हर यात्री नहीं जानता, पर वही पहुंचाती है सबसे निर्मल जल तक। तुम वहां बसे रहे, न पत्रों में, न परिचयों में, न उन कथनों में जिन्हें लोग प्रेम समझ लेते हैं। तुम बसे रहे उस जगह जहां एक स्त्री अपने सारे मुखौटे उतार कर स्वयं से मिलती है। मैंने जब जब दुनिया की भीड़ में लौट कर अपने अंतर का द्वार खोला, तुम वहां मिले, किसी प्रतीक्षा की मुद्रा में नहीं, बल्कि ऐसे मानो कभी गए ही न थे। एक कैसा संबंध है जिसमें दूरी मीलों से नहीं नापी जाती और न निकटता स्पर्श की शर्त पर नहीं टिकी रहती। जहां कोई दावा, कोई अधिकार नहीं, फिर भी एक अदृश्य धागा हर बिखराव को जोड़ता है। मैंने देखा है बहुत से लोग बड़े सुंदर वाक्य रच लेते हैं, पर उनके साथ चलते हुए बार बार मन को अपना परिचय देना पड़ता है। और कुछ लोग जिनके पास पहुंचकर अंतर का सारा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तुम उन्हीं में से एक रहे।

सुनो एक बात कहूं, तुम्हारे लिए मुझे कभी कोई भूमिका नहीं लिखनी पड़ी। मेरी चुप आंखें, मेरे अधूरे प्रश्न, मेरे भीतर की अनगिन परते सब तुम्हें पहले से ज्ञात थी। शायद इसलिए तुम्हें याद करना भी याद करना नहीं लगता। वह तो वैसा है जैसे नदी को अपने स्रोत का स्मरण हो, जैसे आकाश को अपने विस्तार का। मैं जब भी अपने भीतर उतरती हूँ, एक शांत उजली रेखा दूर तक जाती दिखाई देती है और उसके अंतिम छोर पर कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो बस एक गहन आत्मीयता रहती है, जो शब्दों से बड़ी है, व्याख्याओं से बड़ी है और उन सभी प्रमाणों से बड़ी जिनकी दुनिया मांग करती है। मैं उसी को प्रेम कहती हूं, जो बांह पकड़ कर नहीं हृदय में घर बनाकर रहता है, जो दिखाई कम देता है पर जीवन की हर ऋतु में अंतर के दीप को बुझने नहीं देता। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

और उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं ये गीत, और इस गीत के बाद हम और भी बातें करेंगे।

और अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है वो सात दिन।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद मीना होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल ही तो है, आवाज है मन्ना डे साहब की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।

0: मंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents. The Prime Minister said he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हो चुका है रात के 3:11:06 हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों जानते हैं वादे तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन सच्चा प्यार वादों से नहीं बल्कि निभाने से पहचाना जाता है कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं जैसा कि ये गीत

दोस्तों जिंदगी का हर मोड़ अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं तो कुछ रास्ते हमें खुद से मिलवा देते हैं कभी किसी मोड़ पर कोई अपना साथ चलने लगता है तो कभी कोई याद बनकर पीछे छूट जाता है लेकिन सफर रुकता नहीं है बल्कि कदम आगे बढ़ते रहते हैं

जानते हैं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से जीते जाते हैं। ऐसी ही मीठी भावनाओं को सुरों में पिरोया है संगीतकार सलील चौधरी ने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों में। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की सुमधुर आवाजों से सजा ये सदाबहार नगमा आज भी प्रेम की मासूमियत को उतनी ही खूबसूरती से बयां करता है। आइए सुनते हैं फिल्म माया का ये अमर गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताओं अब पेश है एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसमें प्रेम की गहराई समर्पण की मिठास और जीवन भर साथ निभाने का अटूट विश्वास झलकता है। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया ये गीत आज भी हर प्रेम करने वाले दिल की धड़कन बनकर गूंजता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:34 और 58 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत हमने लिया है फिल्म सूरज से, जिसे गाए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। क्षमा कीजिए, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने श्री वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाय मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है सुबह के 4:11 और 17 सेकंड। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसमें कभी संघर्ष आते हैं तो कभी रास्ता सीधा नजर आता है। कहते भी है ना कि जब तक पत्थर पर भी हथौड़ा नहीं पड़ता ना, तो भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता। जब उस पर चोट लगती है तभी वो भगवान की मूर्ति बन पाता है। इसी तरह इंसान भी जब संघर्ष करता है ना, तो उसके अच्छे दिन जरूर आते हैं, लेकिन अगर अपने का साथ हो तो और भी सफर आसान हो जाता है।

हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं रहती? क्योंकि दोस्तों हम ना दूसरों की शिकायतें करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, लेकिन जिस दिन हम अपनी ये सोच बदल देंगे ना, उन्हें सुधारने के बजाय अगर हम खुद को सुधारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हो चुका है 4:31 और 8 सेकंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी मीना चौहान के साथ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, खुशनसीब वो इंसान नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि खुशनसीब वो इंसान होता है जो हर चीज को अपनी मेहनत और लगन से अच्छा बनाता है।

जानते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी में खुद पर भरोसा हो ना, तो हर मुश्किल छोटी लगती है। अगर भरोसा ना हो, तो आसान चीज भी नामुमकिन सी लगती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और खुद पर भरोसा रखिए।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार और 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिका की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने बताया कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 22 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन संबंधित घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और उसका इलाज जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपशिष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया है। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, "Government's foremost responsibility was to ensure that students should not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately." He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents.
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए गुनहगारों को पकड़ा गया है वे जेल में पड़े हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया
2: Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said, the Court of Officer Anugrah Baliga at the Rao's Venue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with connected offences. Ms. Baliga, who was serving as a judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Rao's Avenue Courts, a special judge for the purpose. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to the unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike of the 26 days at a private hospital in Gurugram tonight in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife Gitanjali Yangmu and senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations and various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchuk went on hunger strike from 28th of last month, demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Prime Minister Narendra Modi has urged social activist Sonam Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. In a social media post, Mr. Modi prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vinit Joshi, who is presently Secretary Higher Education and Ministry of Education, has been appointed as Secretary Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary Higher Education. T.K. Anil Kumar will be Secretary School Education and Literacy. Housing and Urban Affairs Secretary Kati Kithala Srinivas has been appointed as Secretary Ministry of Development of Northeastern Region. Kesha Chandra will be Secretary Ministry of Mines and Chandrabhushan Kumar will be Secretary Ministry of Labour and Employment. Sushil Kumar Lohani will be Secretary Animal Husbandry and Dairy. Satendra Singh has been appointed as Secretary Department of Urban Development and D. Tara as Secretary Department of Capital Development. Piyush Goyal will be Secretary General National Human Rights Commission. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today to further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lokalyan Mark, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram North, Parakamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpat, Chandewala, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha Khan Market, Chorbagh and Shivaji Stadium. The 23rd Commonwealth Games began yesterday in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. The Indian contingent led by flag bearer Neerabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain marched into the OVO Hydro Arena with athletes waving the nature tricolours. And that is the end of this news bulletin.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। बहुत सुहाने कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।
1: हंसो मत, बोलो

पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता, बल्कि वो सदैव नए फूलों के खिलने का निर्माण करता रहता है। दोस्तों, इसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में कभी मुश्किलें आती हैं, कभी दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। हमें भी नई चीजों की ओर बढ़ना चाहिए और पिछली चीजें जो हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।

0: सिर्फ जरूरत पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है।
1: गरज दुनिया